सुलोंग लिनवी सद भाई शुमीने बैलंग चा पी सॉन्ग्स गले मिनी क लू सुशिन तलन नसना सानीला थुले आप जगत को पी बात तलन नसी हुर्च का थद्दनी या तोसल दंदी क्वायल लागे चे उदूर उदूर थुले आप जे चान अन्यांगान चीचन आगत पाचु चिगली दरत सुई होटल दनावाद उरुक ससंगर